ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु।
1: महोदये, योगशास्त्रं किं शास्त्रम् अस्ति?
0: योगशास्त्रं दर्शनशास्त्रम् अस्ति।
1: दर्शनशास्त्रम्?
0: आम्, संस्कृतभाषायां दर्शनशब्दस्य अर्थः भवति देखना या अनुभव करना। तत्र धातुः अस्ति दृश्, प्रेक्षणे। येन तत्त्वस्य दर्शनं भवति तत् दर्शनशास्त्रम्। तत्त्वस्य ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्। दर्शनशास्त्रम् इत्युक्ते तत्त्वज्ञानम्। भारतीयदर्शनानि बहूनि सन्ति। तेषां विभजनं द्विधा क्रियते। एकम् अस्ति आस्तिकदर्शनम्, द्वितीयम् अस्ति नास्तिकदर्शनम्। यः आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य ईश्वर के सत्ता मानने या न मानने में नहीं है। जो वेद की प्रामाणिकता मानते हैं, वे दर्शन आस्तिक दर्शन है, और जो वेद की प्रामाणिकता नहीं मानते हैं, वे नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शनानि षट् सन्ति: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। नास्तिक दर्शनानि मुख्यतः त्रीणि सन्ति: चार्वाक, जैन, बौद्ध। बौद्ध दर्शनस्य चतस्रः शाखाः सन्ति: सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक यानि शून्यवाद, योगाचार यानि विज्ञानवाद। अतः आहत्य नास्तिक दर्शनानि अपि षट् इति वक्तुं शक्यते। इन इंग्लिश, दर्शन मीन्स फिलोसॉफी। इन इट्स वाइडेस्ट एटिमोलॉजिकल सेंस, फिलोसॉफी मीन्स लव फॉर नॉलेज। द वेस्टर्न फिलोसॉफीज डेवलप्ड मेनली फॉर द लव ऑफ नॉलेज, बट इंडियन फिलोसॉफीज आर डिफरेंट। दे वेर डेवलप्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर रिमूविंग द सोरो फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। सो दे आर मोर कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ। दैट्स वाई इंडियन फिलोसॉफी इज कॉल्ड दर्शन शास्त्रम्। भारतीय तत्त्वज्ञानस्य मूल तत्त्वम् अस्ति आत्मा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः इति बृहदारण्यकोपनिषदि। आत्मनः ज्ञानम् आत्मज्ञानम्। आत्मा यदा शरीरे बद्धः इव भाति, तदा सः जीवात्मा इति उच्यते। आत्मज्ञानात् एव परमात्मा ज्ञातुं शक्यः। आत्मा परमात्मा च एकः एव इति अद्वैतवेदान्तदर्शनम्। आत्मनः स्वरूपं सत् चित् आनन्दम्। अतः एव आत्मा सच्चिदानन्दः। इदम् आत्मतत्त्वम् एव जीवः, जगत्, ईश्वराणाम् आधारः। इदम् आत्मतत्त्वम् एव जीव, जगत्, ईश्वराणाम् आधारः। तेषाम् उत्पत्ति, स्थिति, लयकारणम् च। ऐसा कोई भी भारतीय नहीं जिसने आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, सच्चिदानंद, सृष्टि, स्थिति, लय, जीव, जगत, ईश्वर ये शब्द नहीं सुने होंगे। हाँ, हो सकता है इनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी न हो, या दुर्भाग्य से जानने की इच्छा भी न हो, मगर अपना शास्त्र कहता है कि इनको जानना चाहिए। इन सब का मूल है आत्मा। आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। वही अपना सच्चा स्वरूप है। आदि शंकराचार्याणाम एकम प्रसिद्धम स्तोत्रम अस्ति असंगोहम इति। तत्र श्लोकः अस्ति असंगोहम असंगोहम असंगोहम।

0: वे कहते हैं, मेरा सच्चा स्वरूप सच्चिदानंद है, यही अपनी सच्ची पहचान है और इस सत्य को जानना ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य है। तो यह हो गया भारतीय दर्शन शास्त्रों का छोटा सा परिचय। कल हम योग दर्शन के बारे में थोड़ा जान लेंगे। अद्यतन प्रश्न अस्ति, भारतीय दर्शनानां प्रकारद्वयम् तत् किम्। इदानीं गीता श्लोक पठनम्। नवमोऽध्यायः, श्लोक संख्या 11-20 पर्यन्तम्। अध्याय 9, श्लोक संख्या 11-20। ओम श्री परमात्मने नमः।
1: ओम श्री परमात्मने नमः।
0: अवजानन्ति मां मूढाः।
1: अवजानन्ति मां मूढाः।
0: मानुषीं तनुमाश्रितम्।
1: मानुषीं तनुमाश्रितम्।
0: परं भावमजानन्तः।
1: परं भावमजानन्तः।
0: मम भूतमहेश्वरम्।
1: मम भूतमहेश्वरम्।
0: मोघाशा मोघकर्माणः।
1: मोघाशा मोघकर्माणः।
0: मोघज्ञानाविचे चेतसः।
1: मोघज्ञानाविचेतसः।
0: राक्षसीमासुरीं चैव।
1: राक्षसीमासुरीं चैव।
0: प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः।
1: प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः।
0: महात्मनस्तु मां पार्थ।
1: महात्मनस्तु मां पार्थ।
0: दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।
1: दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।
0: भजन्त्यनन्यमनसः।
1: भजन्त्यनन्यमनसः।
0: महात्मानस्तु मां पार्थ।
1: महात्मानस्तु मां पार्थ।
0: दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।
1: दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।
0: भजन्त्यनन्यमनसः।
1: भजन्त्यनन्यमनसः।
0: ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम्।
1: ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम्।
0: सततं कीर्तयन्तो मां।
1: सततं कीर्तयन्तो मां।
0: यतन्तश्च दृढव्रताः।
1: यतन्तश्च दृढव्रताः।
0: नमस्यन्तश्च मां भक्त्या।
1: नमस्यन्तश्च मां भक्त्या।
0: नित्ययुक्ता उपासते।
1: नित्ययुक्ता उपासते।
0: ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने।
1: ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने।

0: जीवनात सुखदुःखाचे अनेक प्रसंग येतात, परंतु ज्याच्या मनात श्रद्धा, संयम आणि ईश्वरावर अढळ विश्वास असतो त्याचा मार्ग नेहमीच प्रकाशमान होत असतो. भक्ती म्हणजे केवळ मंदिरात जाणे नव्हे तर प्रत्येक कृतीत माणुसकी जपणे ही आहे. आध्यात्मिक विचार आपण ऐकणार आहोत. भक्तिमय सकाळ हा कार्यक्रम सुरू आहे. केली गुणध्वनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात.
1: वाक्पटुता का महत्व. कभी कभी बात न चाहते भी बिगड़ जाती है और फिर उस बात को बनाना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है. लेकिन बुद्धिमान तो वो होता है जो चतुराई भरे बोल से समस्या का समाधान कर दे. बात को बिना बिगाड़े युक्त युक्त बोल से सुधार देना वास्तव में एक कला है जो वाक्पटुता कहलाती है. वाक्पटुता अर्थात हजर जवाबी होना, यानी हर सवाल का शीघ्रति शीघ्र जवाब देना, या फिर विपरीत परिस्थिति में भी कुशलता पूर्वक बात कर समस्या का समाधान कर देना. उचित तर्क प्रस्तुत कर युक्ति युक्त संवाद से बिगड़ती बात को बना देना वाक्पटुता है. प्रसंग, माहौल, आयोजन व परिस्थिति के अनुकूल सभी को रुचिकर लगने वाली बात प्रस्तुत करना वाक्पटुता है. कठिन से कठिन लगने वाले विषय को भी सहजता से प्रस्तुत करने की कला का नाम है वाक्पटुता. इसे वाक्चतुर्य भी कहते हैं. हर क्षेत्र में विषय का प्रस्तुतिकरण एक कला है और ये कला केवल वाक्चातुर्य के बल से ही संभव है. वाक्चातुर्य में प्रवीण व्यक्ति बुद्धिबल का धनी होता है. वो हर चुनौती का और विकराल परीक्षा का बुद्धिमानी युक्त बातों से सामना करता है. उसकी बुद्धि सदा जागृत और तीक्ष्ण होती है और वो शक्ति के बजाय युक्ति से काम लेता है, अर्थात हर समय बुद्धि बल का प्रयोग करता है और अंत में जीत हासिल कर लेता है. वाणी की चतुराई से कैसी भी अनसुलझी पहेली को चंद क्षणों में हल कर देता है. वाक्पटुता वास्तव में संवाद चातुर्य है जिससे हार भी जीत में बदल जाती है. हजर जवाबी बीरबल अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक प्रतिभाशाली वाक्पटु थे. वे वाक्चातुर्य से दुश्मनों को परास्त कर देते और बादशाह से खूब इनाम बटोरते थे. राजा कृष्णदेवराय के चहेते

तेनाली रामन भी ऐसे ही कुशल वाक्पटु थे और अपनी हजर जवाबी से हर समस्या का शीघ्र समाधान कर देते थे। अतः वाक्पटुता को अपनाइए और समस्या का चुटकी में समाधान करने की कला पाइए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामना है।

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: परिवर्तन का प्रतीक है
2: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो मिडिल क्लास हो ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को

0: बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था

0: वो खत्म हो गया था, तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर, विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं विण ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। दोस्तों, हर बार एक इम्पोर्टेंट या कोई जानकारी से भरा हुआ टॉपिक मैं लेकर आती हूँ। कभी ट्रैवल पे शोज करती हूँ, कभी हेल्थ पे शोज करती हूँ, कभी किसी सोशल टॉपिक पे शो करती हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा फिलोसॉफिकल हुआ जाए और लाइफ के बारे में बातें की जाए। लाइफ के बारे में बात करने के लिए ना थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है। तो फटाफट मस्त गर्मा गर्म या ठंड चाय या कॉफी, आपको जो भी पसंद हो वो लेकर आइए, उसको ग्रहण कीजिए और तरोताजा हो जाइए, फिर हम बातें करेंगे। क्योंकि ऐसे थके हुए, हारे हुए, बोर हुए हुए लोगों से बात करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। जितनी एनर्जी मैं आपको पॉजिटिव देने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपसे भी चाहिए। तो तरोताजा हो जाइए, कुछ प्यारे गाने सुनिए और लौट कर आइए KLE विण ध्वनि 90.4 FM पर।

खुशी क्या है? अपनी जिंदगी में तकलीफ और दर्द ना हो तो खुशी है। हम तो यही सोचते हैं ना, एक लाइफ ऐसी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ही ना हो तो वो खुश जिंदगी मानी जाती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे कि स्वरा क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, अगर किसी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो खुश लाइफ ही हुई ना, आनंद ही आनंद हुआ ना उसकी लाइफ में, फिर तुम ऐसा बोल रही हो कि ये लाइफ हैप्पी लाइफ नहीं है। जी हाँ, ये हैप्पी लाइफ नहीं है। और हैप्पी लाइफ किसे कहा जाता है मैं बताऊंगी ना आपको, इतनी जल्दी क्या है भाई, थोड़े से गाने सुन लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा इंतजार भी कर लो, मैं लौट कर आ रही हूँ इन प्यारे गानों के बाद।

जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही फरमाया था कि जिस लाइफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं है वो लाइफ हैप्पी लाइफ नहीं होती। हैप्पी लाइफ उसे कहते हैं जब आप प्रॉब्लम से डील करना सीख जाते हैं। बिना प्रॉब्लम्स की लाइफ तो ऐसा होगा कि बिना नमक की बिरयानी। अगर बिरयानी में सभी मसाले सही डले हैं, आपके सभी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स डले हैं पर नमक ही नहीं डला है, तो वो बिरयानी बेकार हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम्स तो लाइफ में होनी चाहिए, पर उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का तरीका जब आपको पता चल जाता है तब आपकी लाइफ हैप्पी हो जाती है। इसलिए प्रॉब्लम्स को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ का नमक है, और उस नमक को सही इस्तेमाल करना सीखिए, यानी उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखिए, तब आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। मस्त फंडा दिया ना, अब मस्त गाने सुनो और लौट कर आओ KLE वेणुध्वनि 90.4 FM पर।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत।

बहुत बार ना हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनको लेने के बाद हमें बहुत दुख होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीजंस गलत है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है पर इसका मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा इत्मीनान से सोचें, रिलैक्स होकर सोचें और कुछ गाने एंजॉय करें। उसके बाद हम इसी लाइन के बारे में थोड़ा और गहराई से बातें करेंगे। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि, दिस इज आरजे स्वरा एंड यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत।

जी हाँ, जो डिसीजन लेते वक्त आपको दुख हो वो डिसीजन गलत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिल पर पत्थर रख के बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है जो आपको तब दुख देगा पर आगे जाके उसके रिजल्ट्स आपको हमेशा खुशी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर भेजते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए गाँव से शहर भेजते हैं, शहर से दूसरे राज्य में भेजते हैं, देश से दूसरे देश में भेजते हैं, वो अपने दिल पर पत्थर रख के ही तो भेजते हैं ना अपने बच्चों को। कौन माँ बाप ये चाहेगा कि उनका बच्चा उनकी नजरों से एक पल भी दूर रहे। इस डिसीजन से उनको दुख बहुत होता है, इस दुख का तो कोई इलाज भी नहीं है और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। पर कुछ समय जाने के बाद उस डिसीजन का जब उनको रिजल्ट मिलता है, जब उनके बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तब जो होने वाली खुशी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। इसलिए कुछ ऐसे टफ डिसीजंस होते हैं जो लेते वक्त आपको बहुत दुख होता है और उस दुख को आप ओवरकम नहीं कर पाते, इसीलिए आप वो डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दुख हो तो भी दिल पर पत्थर रख के सही डिसीजन लेना ताकि आगे जाकर लाइफ में आप खुश रह सके। ये था फंडा नंबर 2। अब ये काफी हैवी फंडा था तो आपको लाइट करने के लिए कुछ प्यारे गाने भी सुनेंगे। आप तुरंत ही लौट कर आना क्योंकि फंडा नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है। आपको कहाँ लौट कर आना है? KLEV वेणुध्वनि 90.4 FM पर, बी रिलैक्स में, जहाँ पर मैं आरजे स्वरा आपका इंतजार कर रही हूँ।

बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ सीखने के लिए आप बहुत स्ट्रगल करते हो, कोई ऐसा लाइफ लेसन होता है जो आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, हमेशा आप स्ट्रगल करते हो और आप चाहते हो कि ये लाइफ लेसन मुझे सीखना ही नहीं है, मेरे लाइफ से दूर चला जाए, पर फिर भी वही सिचुएशन, वही प्रॉब्लम, वही स्ट्रगल बार बार आपके सामने आकर खड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपको परेशान करना चाहती है या ऊपर वाला आपको हमेशा तकलीफ देना चाहता है। उसका मतलब ये है कि जब तक आप उस स्ट्रगल को दूर नहीं करोगे, उस स्ट्रगल को पूरा करके पार नहीं करोगे, तब तक वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहेगा। जब तक आप उस लाइफ, उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से अपनी सीख नहीं लेते, तब तक वो प्रॉब्लम बार बार आपके सामने आके खड़ा होगा। अगर कोई सिचुएशन, कोई डिफिकल्टी बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, तो शांति से दिमाग ठंडा करके सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मुझे क्या सीखना चाहिए और इससे मुझे पार कैसे करना चाहिए। एक बार आप सही सीख, सही लेसन उससे ले लोगे, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन, वो स्ट्रगल आपके लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा, आप उसे आसानी से पार कर जाओगे। दिस वॉज द फंडा नंबर 3 जो मैंने एक ही बार में खत्म कर दिया। अब फंडा नंबर 4, आई डोंट नो, मैंने शायद नंबर में कुछ गड़बड़ कर दी है। भाई मेरा काम है बातें करना, आप फंडे गिनते रहिए, गिनती इधर उधर हो जाएगी, पर जो मैंने तैयार किया है या जो मैंने सोचा है वो मैं बोलकर ही जाऊंगी। पर उससे पहले कुछ प्यारे गाने सुन लीजिए। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM। Be relaxed with RJ Swara।

अब एक बहुत ही प्यारा सा फंडा जो मैंने सुना था और मुझे इतना अच्छा लगा। खुशी बहुत खूबसूरत है, खुशी इतनी खूबसूरत है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपकी खुशी है या किसी और की खुशी है। नहीं समझ में आया? अगर आपके सामने कहीं दूर एक छोटा सा बच्चा एक चॉकलेट लेकर मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, तो उसे देखकर क्या आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती? क्यों क्यों आई आपके चेहरे पर मुस्कान? खुशी तो उस छोटे से बच्चे की थी, फिर आप क्यों खुश हुए? हो गए ना खुश? यही तो जादू है खुशी का। आपकी खुद की हो तब भी आप खुश होते हो और किसी और की हो तब भी आप खुश होते हो। पर ना जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स में उलझने लगते हैं, हम सिर्फ अपनी खुशी पर फोकस करते हैं। अच्छा इंसान, सही इंसान वो है जो दूसरों के लिए काम करे, जो दूसरों को खुश करने के लिए काम करे। क्योंकि खुद को तो सब लोग खुश कर लेते हैं, दूसरों को खुश करना, उसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि हम बार बार याद करते हैं कि उसके लिए मैंने ये किया था, वो खुश हुआ था। उस याद को याद करके भी आपको खुशी मिलेगी। यानी अच्छा काम आप करोगे एक बार, पर उसे जितनी बार याद करोगे उतनी बार आपको खुशी मिलेगी। और वो अनुभव आप जितने लोगों के साथ बांटोगे, जिनको बताओगे, वो भी वो सुनकर खुश होंगे और वो और लोगों को सुनाएंगे और लोगों को बताएंगे और लोग खुश होंगे। मतलब सोचो ये कितना मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही इसका एक सिंपल से एग्जांपल है। एक समाज कैसे खुश हो सकता है जिस समाज में वो बूढ़े लोग हो जो बीज बोते हैं और पौधा बढ़ाते हैं, खाद पानी डालते हैं। उनको पता है कि ये जब पेड़ बनेगा, ये पौधा जब पेड़ बनेगा और छाया देगा, उस छाया के नीचे बैठने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। फिर भी वो बीज बोते हैं, पौधे को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है भले ही वो खुश न हो पर कोई न कोई इसकी छाया में बैठकर जरूर खुश होगा। अगर ऐसे बड़े लोग हमारे समाज में हैं तो हमारा पूरा समाज खुश हो सकता है। अब ये भी बहुत बड़ा फंडा था जिसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो थोड़े गाने सुन लीजिए और लौट कर आइए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM पर। बी रिलैक्स में मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रही हूँ।

अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग सा फंडा है, क्या आप गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ रेयर व्यू मिरर में देखते हो? नहीं ना, आपका ध्यान तो सामने वाले बड़े कांच पर रहता है, विंडशील्ड जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान रहता है, और बीच बीच में जब जरूरत पड़े तब ही आप रेयर व्यू मिरर पे देखते हो। जो सिर्फ रेयर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाता है उसको आप क्या बोलोगे? गधा बोलोगे ना, पागल बोलोगे नेचुरली, क्योंकि उसे आगे जाना है, थोड़ी ना पीछे जाना है। अगर पीछे जाना हो, रिवर्स लेना हो, तब आप रेयर व्यू मिरर देखो, अगर आगे जाना हो तो आपको सामने ही देखना पड़ेगा, है ना? सिंपल सी बात है, यही हाल है हमारी लाइफ का। जो पीछे चला गया वो आपका पास्ट है, अगर उसे आप विंडशील्ड की तरह, सामने वाली खिड़की की तरह, सामने वाले बड़े कांच की तरह महत्व दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे जा रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे के कांच पे फोकस करना है, सामने रास्ता क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रेयर व्यू मिरर दिया ही इसलिए होता है कि आप पीछे क्या है, पीछे आपने क्या अनुभव किया, क्या गलतियाँ की, उससे क्या सीख ली, उसे याद रखे, उसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करे और फिर आगे बढ़े। तो हमेशा जब भी ऐसा लगे कि आप अपने पास्ट में उलझे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी का जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, उसे जरूर याद करना। कोई भी बंदा जब रेयर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाता है तो वो रिवर्स में ही जा रहा होता है। अगर आगे जाना है तो आगे के कांच में फोकस करना होगा और बीच बीच में रेफरेंस के लिए रेयर व्यू मिरर देखना सही है। इसी के साथ आज का शो यहाँ पर खत्म होता है। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपने लाइफ के फंडे जो है ना, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बांटे, क्या पता किस फंडे की जरूरत कब और किसको पड़ जाए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप ट्यून है वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू पे और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात। शो की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ जो है मेरे हुजूर मूवी से, गम उठाने के लिए मैं तुझे चाहूंगा। मोहम्मद रफी की आवाज में ये सॉन्ग आपके लिए, और ये मूवी आई थी 1968 में। माला सिन्हा, राजकुमार और जितेंद्र के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग गम उठाने के लिए मैं तुझे चाहूंगा।
1: जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे।

अगला गाना हम सुनेंगे खुश रहे तो सदा, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और अलका खिलौना के ऊपर फिल्माया गया है गीत, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने। तो चलिए सुनते हैं खुश रहे तू सदा।

0: खुश रहे।
1: वेणु धोनी 90.4 के एल ई कन्हे सुबह आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मनीषा को आप सुन रहे हैं तुम बिन जाओ कहाँ। ये खूबसूरत सा सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है प्यार का मौसम मूवी से। ये मूवी आई थी 1969 में। गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग जो है तुम बिन जाओ कहाँ प्यार का मौसम मूवी से।

अगला बहुत ही इमोशनल सॉन्ग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसके बोल है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हीर रांझा मूवीज से ये सॉन्ग है, जो मूवी आई थी 1970 में। राजकुमार और प्रिया राजवंश, प्राण और पृथ्वीराज कपूर के ऊपर फिल्माया गया ये गीत, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। तो चलिए सुनते, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है।

अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। मोहम्मद रफी की आवाज में दो बदन मूवी से ये सॉन्ग है, जो मूवी आई थी 1966 में। मनोज कुमार, आशा पारेख और सिमी अग्रवाल के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा।

93.4 वेणु धोनी के एल ई कनसू पे आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मनीषा को आप सुन रहे हैं। प्यार ही प्यार मूवी से अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है और गाने के शब्द है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ।

0: यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जो है ए जो चिल मन है दुश्मन है हमारे। महबूब की मेहंदी मूवी से ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1971 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है, आनंद बख्शी के शब्द है। राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग ए जो चिल मन है दुश्मन है हमारे।
1: ये जो चिलमन है

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे बड़े अच्छे लगते हैं। बालिका वधू मूवी से ये सॉन्ग है जो फिल्माया गया है सचिन पिलगांवकर और रजनी शर्मा के ऊपर। गाने को आवाज दी है अमित कुमार और ये मूवी आई थी 1976 में। म्यूजिक है आर डी बर्मन जी का। तो चलिए सुनते हैं बड़े अच्छे लगते हैं।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोठोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।